सा सारेगा सारेगा सारेगा वो री सा। अरे हरे किन्नरी जोड़ी ताड़ा कंजरी। हाँ मैसूर दसरा।